0: शेवटचं गाणं, वर्ष 1946, चित्रपट शहाजहाँ, गीत मजरू सुलतानपुरी, संगीत नौशाद, आवाज KL सैगल। गाण्या अगोदर गीतकार आणि दिग्दर्शक गुलजार त्यांच्या बालपणीच्या आठवणी सांगत आहेत। गाण्याचे शब्द आहेत, गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। पुन्हा भेट पुढच्या अंकात। नमस्कार।
1: This is how I knew him, as a singer only, in my childhood, in my school age, I should say, because my elder brother, he used to sing KL Sagar. So the name was familiar. And radio ek zariya tha jahan pe gaane suna karte the. Ek gramophone tha chote se jo chali bhi chalaya jata tha. हमारे बड़े भाई साहब KL सैगल के फैन थे, तो उनके रिकॉर्ड्स लाया करते थे। कहा तो जो तकदीर मुझे इतना बता दे, उस जमाने के समय वो गाने हैं हमारे पास साहब, जो जिनसे एसोसिएशन है। संबंध में भी न्यू KL सैगल जो शाहजहां फिल्म के गाने, तानसेन की फिल्म के गाने, दिया जला दिया जला, जी के क्या करेंगे जब दिल्ली टूट गया, तो इन गानों से भी एसोसिएशन है सैगल साहब से, वो बचपन की। और वो आवाज, उस आवाज से आवाज अपनी जैसी एक ही थी, जाहिर है कि आदमी भूल नहीं सकता वो आवाज, अगर खासतौर पर उस उम्र में सुनी हो तो बिकम द पार्ट ऑफ

0: शेवटचं गाणं, वर्ष 1946, चित्रपट शहाजहाँ, गीत मजरू सुलतानपुरी, संगीत नौशाद, आवाज KL सैगल। गाण्या अगोदर गीतकार आणि दिग्दर्शक गुलजार त्यांच्या बालपणीच्या आठवणी सांगत आहेत। गाण्याचे शब्द आहेत, गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। पुन्हा भेट पुढच्या अंकात। नमस्कार।
1: दिस इज हाउ आय न्यू हिम एज अ सिंगर ओनली इन माय चाइल्डहुड इन माय स्कूल एज आय शुड से बिकॉज माय अलिगल ही यूज्ड टू सिंग KL सैगल सो द नेम वाज फैमिलियर और रेडियो एक जरिया था जहाँ पे गाने सुना करते थे। एक ग्रामोफोन था छोटा सा जो चाबी देकर चलाया जाता और हमारे बड़े भाई साहब KL सैगल के फैन थे तो उनके रिकॉर्ड्स लाया करते थे। का तो जो तकदीर मुझे इतना बता दे, उस जमाने के समय वो गाने हैं हमारे पास जो जिनसे एसोसिएशन है। KL सैगल जो शाहजहां फिल्म के गाने तानसेन की फिल्म के गाने दिया जला दिया जला ये हम जी के क्या करेंगे जब दिल्ली टूट गया, तो इन गानों से भी एसोसिएशन है सैगल साहब से वो बचपन की। और वो आवाज उस आवाज से आवाज अपनी जैसी एक ही थी, जाहिर है कि आप मुझे भूल नहीं सकता वो आवाज। अगर खासतौर पर उस उम्र में सुनी हो तो बिकम द पार्ट ऑफ योर मेमोरी।